0: ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ସହ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग

0: कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ପ୍ରଭାତ ନେଇ ଆସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ। ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମନକୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଭକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ଶୁଣନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଗୀତଟିକୁ। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ରାୟ, ଗୀତ ରଚନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମେହେର, ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ।

0: ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डॉनल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: रिलेकलो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान शुणन्तु आजि प्रसारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्कित सूचना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी

0: जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुआसा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम को। बहुत दूर से आप हमको फोन किए हैं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद, फोन लगा आपसे बातचीत हो रहा है, खुशी बढ़ रहा है मैडम। और स्मृति मनन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सर, SIR सर,
0: जी।
1: और गीत की बोल है सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सनी।
0: बहुत
1: और
0: सुंदर गीत।
1: सबसे पहले गीत आप

0: प्रतापपुर भर श्रोताओं को, आकाशवाणी संबलपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपकी सहेलियों को, आकाशवाणी संबलपुर में जुड़े सभी कृषक भाई बहनों को और स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्टर रेडियो श्रोताओं को, पूरे भारत श्रोता को डिटेल करो मैडम, इस गीत को पूरा सुनाइएगा
1: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुन लीजिए आपका पसंद का गाना
0: जी मैडम,
1: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: आज्ञा नमस्कार
0: नमस्कार आज्ञा के कहुचन केनु कहुचन
1: मो सुरन कुमार साहू आज्ञा गांधी टिकरा पोस्ट ऑफिस कोलता टुकरा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ टू कहू जे
0: आपन को बहुत बहुत स्वागत आज्ञा आ कहुन आज्ञा आपन केनता अछन
1: मो तो बढ़िया अछे आज्ञा आपन केनता अछन कहुन तो
0: आमे माने भी बहुत भल अछु आज्ञा
1: आ आपन का परिचय के दो
0: मोन ना होचे स्वीटी पाढ़ी उपस्थापिका स्वीटी पाढ़ी है मुई आज्ञा आओ आज्ञा आज्ञा आमे आगरु भी कथा है चा आज्ञा आ कोन आज्ञा आपण काण करसन
1: मु आज्ञा हमर कोसा पितळ काम करू थली
0: आज्ञा आज्ञा
1: वर्तमान हमर रोजगार नै चलबा भले बयस भी हे गला न
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
1: तो हमर कोणिको वृत्ति भी लोप पाई जाउ छी
0: हेटा तो आए आज्ञा किंतु केही बुझवान नै जे इटा हमर परंपरा लागि बहुत जरूरी है नै खाना कहुचन कंसा बासन साइंटिफिकली भी व्यवहार करबाटा बहुत भल आज्ञा आज्ञा तो कहूं
1: ना ये लोक तर चाहिदा आस्ते आस्ते कमी होचे नै डिमांड ले लोक काम करवार लागि माने कोळिक वृत्तिटा लोप पाई जाउचे हमर
0: आज्ञा हेटा परे ठीक अछे आज्ञा कहुन आपण आज केन गीत सुनबा के चाहुचन
1: आजी देबे आज्ञा मोर नसीब अपना अपना रो
0: आज्ञा
1: भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है
0: बहुत सुंदर गीते बाजले आज्ञा अब बहुत सुंदर करी गाउछन भी ना कण आज्ञा काके डेडिकेट करमा के
1: डेडिकेट तो करमा आज्ञा आपन को आगो करमा
0: बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा
1: तापरे आज्ञा हमर आपनकर अनुष्ठान रे जतकी अछन कर्मकर्ता समस्त को डेडिकेट हेबे
0: आज्ञा
1: आ हम 13 दिन मेसरो आज्ञा अछन आपनकर अनुष्ठान रे हमर पुरना हमर माने
0: आज्ञा
1: आज्ञा बेसी करी
0: आज्ञा आज्ञा अच्छा
1: आ तापरे हमर घरे अछन आज्ञा दुई छ सपना सोनाले
0: आज्ञा
1: आ नाचे नाट्या आ हमर मैडम अछन कोंतोरिन मैडम
0: आज्ञा तांको स्पेशल डेडिकेट काई गीतटा
1: आज्ञा
0: आपणकर मिसेस को इटा स्पेशल डेडिकेट के हां
1: हां गीत रे नाय कल आज्ञा के देवा आगो मिसेस के ना
0: आज्ञा आज्ञा
1: और तांगो नाय कल आज्ञा मते राग हेबे ना घरे
0: आज्ञा आज्ञा ठीक कहो जान
1: तापरे आज्ञा मोर अजन समरपुर नानी अछे सरोज कुमारी चाहो
0: आज्ञा
1: न हमर पढान पढान अछे भाई अछे हमर एनवालेंट सुशांत कुमार साहू भाई बहु अछन दीप्ति साहू हूं
0: आज्ञा
1: आओ अछन अमर डेंशन दादा अछन ती अमर ननुपालिन
0: आज्ञा आज्ञा सब परिवार
1: चला या पांच गोचन अमर गार राजकृष्ण मारणा अमर ते नाने अगर रत्न नाने सता अछे जियो इकी अछे अमर
0: दिन
1: से बाबूडा तापर अछन आया अमर वर्णप्रभा भवनी अमर इंटरनेशनल श्रोता आया से समस्त और डेडिकेटेड अमर
0: आज्ञा आज्ञा
1: कॉलेज जतके श्रोता अछन समस्त तांगर माने डेडिकेटेड है तांगर फोन नै लगबा ते बहुत माने कॉन्फ्रेंस कॉल ले कानी करथले आ आगर भी करथले रे
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
1: बहुत दुखे आज्ञा स्वर्ण प्रभा बोली मोर ससुर घर कोटा पाली नो
0: आज्ञा ओहो हेति लगे आउ
1: हां भले मते फोन करसन किंतु नै लगबा बोली के बिछो जाउ जन बुझले कि नै
0: चेष्टा करू तो ना आज्ञा लगबा निश्चय हेटा तो आशा ही करि पारमु आमे
1: के तो आज्ञा पुरुणा श्रोता है
0: आज्ञा आज्ञा
1: आओ तापरे हमर अचन आज्ञा डालबेन चित्तरंजन पुरोहित हमर अति क्लासमेट पुरुणा क्लासमेट है
0: आज्ञा आज्ञा ठीक ठीक होचे सिने आज्ञा अपन जा जांकर
1: हमर आकाश बाड़ी रो जतके अचन आदे हमर श्रोता माने बड़ी होले न
0: आज्ञा आज्ञा
1: हमर बहुत श्रोता जतके पुरुणा नुआ जतके श्रोता जो समतो डेडिकेट कर देबे
0: आज्ञा आज्ञा ई कार्यक्रम माध्यम ती आपन जाजां को ना धल्ले जाजां को ना नाइ भी धल्ले आ सह परिवार समस्त मिसिकेरी आसुन सुन में आपन कर पसंद र गीत के
1: नमस्कार आज्ञा
0: नमस्कार आज्ञा

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲୋ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ
1: हेलो
0: ହେଲୋ
1: ସତ୍ୟ ଦିଦି
0: ହଁ ଜି ନମସ୍ତେ କହାଁ ସେ ବାତ କର ରହେ ହୈଁ ଔର କୌନ ବାତ କର ରହେ ହୈଁ
1: ଚରାଇଦେଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋନାରୀ ଆସାମ ସେ ଭାଇଟନ ମୁଣ୍ଡା ବାତ କର ରହା ହୁଁ
0: ଜି ଜି ଫିର ସେ ବୋଲିଏ ଆପନା ପରିଚୟ ଫିର ସେ ଦିଜିଏ
1: ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚରାଇଦେଉ ସୋନାରୀ ଆସାମ ସେ ଭାଇଟନ ମୁଣ୍ଡା
0: ବହୁତ ଦୂର ସେ ଆପ ହମସେ ବାତ କର ରହେ ହୈଁ ତୋ ବୋଲିଏ ଆପ କେସେ ହୈଁ
1: मैं ठीक हूँ। आप कैसे दीदी?
0: बहुत बहुत अच्छा। आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन, तो सुबह भी बारिश हुआ था, अभी अभी बारिश होने का मतलब ये है,
0: अच्छा अच्छा
1: उम्मीद है।
0: अच्छा अच्छा तो ठीक है, बोलिए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: ये है जलवा फिल्म का आंखें प्यारी है, ये गाना सुना दीजिए।
0: ठीक है, बहुत सुंदर गीत आप चूज किए हैं। तो बोलिए किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे क्या?
1: दोस्तों के नाम डेडिकेट करना है, अमर बसुमतारी, विमल बसुमतारी, जोगेंद्र रंगपी, रमेश पात्र, रनु पात्र, अंजलि बसुमतारी,
0: जी जी
1: चंद्रकांत दत्ता, सुनाराम बालूंग, विनोद गोगोई और बहुत सारे जो अभी सुन रहे हैं, सभी के लिए डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी ठीक है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका पसंदीदा गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं सबको, और सुन लीजिए आपका पसंद का ये गाना।
1: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: ठीक है,
1: आपको।
0: नमस्ते।

0: आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते दीदी, प्रणाम।
0: नमस्ते जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं कोडवा साजा छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम को।
1: जी दीदी,
0: और बोलिए, आप कैसे हैं?
1: सब बढ़िया दीदी, आप लोग?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप क्या करते हैं?
1: यात्रा काम करता हूँ दीदी, सवारी इकट्ठा करके तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए जाता हूँ।
0: अरे, आप तो बहुत पुण्य के काम कर रहे हैं।
1: तब आप ही वो लोग आशीर्वाद दीदी।
0: जी जी जी ठीक है, फिर बोलिए, आप कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
1: प्यासा सावन का है, मेघारे मेघारे सुरेश वाड़ेकर जी का आवाज है, और इसमें जितेंद्र और मौसमी चटर्जी जी की फिल्म है।
0: जी जी जी बहुत अच्छा गीत आप चूज किए हैं। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे क्या?
1: हाँ दीदी, पहले तो संबलपुर रेडियो जो आकाशवाणी के आरजे बहन लोग, आप लोग आरजे भैया लोग हैं, उसके बाद मेरा परिवार बड़ल का प्रियस गुप्ता, उसके दो लड़के श्रेयांश गुप्ता, शशांक गुप्ता, लड़के सेकंड नंबर प्रीति जैन, उसके दो लड़के अनंत जैन, हर्षित जैन, छोटा लड़का विवेक गुप्ता, पत्नी के नाम हीरा देवी। तो उसके बाद रेडियो संबलपुर जितने भी श्रोता भाई बंधु, उसके साथ इस गीत को सुनेंगे के लिए।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके साथ मिलकर आइए सुनते हैं आपका ये पसंदीदा गाना।
1: जी जी धन्यवाद,
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: आकाशवाणी सम्बलपुर, हेलो, अनुरोध कार्यक्रम, हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार नमस्कार आज्ञा, के कहुचन, केनु कहुचन?
1: लोकनाथ साहू भालू बहाल विजयपुर बरगन कहुचन।
0: आज्ञा आज्ञा, आपनको बहुत बहुत स्वागत आज्ञा। आपन होचन आज हमर लास्ट कलर।
1: लास्ट कलर
0: आज्ञा, तो कहुन आपन आज केन के सुनबा के चाहबे?
1: आज गदर फिल्म रा देबे।
0: आज्ञा गदर र केनटा सुनबे के चाहबे?
1: मैं निकिला गड्डे लेके रास्ते पर।
0: बहुत सुंदर गीत बाची छन आज्ञा। आ कहुन आज्ञा आपन केनता अछन?
1: भलो छ, एटा त प्रथम रजन लागे, हैप्पी प्रथम रजन।
0: आज्ञा आज्ञा, आपन को बहुत बहुत शुभकामना।
1: संक्रांति आरो सेतन लागे आमे आज छि लोग किन आमे तीन दिन तक मानसु। चार नंबर दिन आमे पूजा पाठ कले जाकि सेटा चास बाड़ी मैट कुड़ा कुड़ी आमे तीन दिन तक आमे निषेध है, बंद है।
0: आज्ञा आज्ञा, एटा त हमर ओडिया परंपरा। आमे मान ले जाय ही हमर परर पीढ़ी मैंने ये सब कथा मैंने जान भी और मान भी ना काना कहो जान।
1: आगो तो हॉल भी ने फालन थे याद है, हॉल लाने नो डॉक्टर मने भी बोन हो ची।
0: आज्ञा आज्ञा, आप पिठा पना किची?
1: आओ अमर हैप्पी बर्थडे जने दे भी अमर मामा मिश्रा फ्रॉम भुवनेश्वर से माने प्रथम रोज के जन्म है दिल्ली वाली कोई दिल्ली दिनी आमे कॉल कर दिल्ली आओ।
0: आज्ञा आज्ञा, तांकू बहुत बहुत शुभकामना, जन्मदिन और बहुत बहुत शुभेच्छा। हमार कार्यक्रम तरफ रु आमे दे दउछु, आउ तांकू डेडिकेट करमा के गीतटा कांजे आमर समय बहुत कम, बहुत समय बहुत कम आज्ञा। आउ सुनी पकामा आपनकर पसंद रो गीत के
1: आउ डेडिकेट ही करो फिर।
0: कौन कौन आज्ञा?
1: मोर मित्र लोकनाथ प्रधान, रविंद्रनाथ मेहर, गोविंद मेहर, सुबल कुमार साहू, करम सानी साहू, चैतन्य पटेल, सेवाराम मेहर, राधाकांत भाई, भक्त चरण भाई, अश्विनी साहू, नारायण प्रधान, मुरली मेहर, लक्ष्मी नारायण बाग, चित्रसेन सबर, मनोज पटेल, नागु पात्र, नारायण मेहर, हरेश पड़ुआ, पंचानंद पंच विहार, जशवंत पाइक, आनंद मेहर, सौन्य प्रभाकर, दीक्षा गोपाल, लिंगराज बहु प्रशांत, रोहिणी मेहर, क्षमा सागर, निराकार रणा, मुना पंडा और सत्य कुमार साहू आमर वीरभर बाग समस्तंकु डेडिकेट करले।
0: ठीक अछि आज्ञा, ई कार्यक्रम माध्यम ती समस्तंकु ई गीतटा डेडिकेट करबे।
1: समस्त टिके डेडिकेट नै करनि होय।
0: आज्ञा आज्ञा, सुनि पगण आपनकर पसंद रे गीत, काहे समय बहुत कम हमर पाखे।
1: हां हां, जय जय।
0: नमस्कार।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସମୟ ସକାଳ 10:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: सुनुथिले हिंदी ते संवाद रिले कोलो आकाशवाणी दिल्ली केंद्र नो आपण माने कार्यक्रम सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केंद्र नो।
4: एनडीए सरकारक 12 वर्ष पूर्ति अवसर रे आकाशवाणी संबलपुर प्रस्तुत करिछि विशेष कार्यक्रम 12 वर्ष भरिछि हस। उपस्थापना अभिषेक शर्मा, संपादना सौभाग्य कुमार रथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एही सिद्धांत उपरे आधारित कार्यपंथा अंतर्गत देश में गत 12 वर्ष मध्यरे उल्लेख

0: चासिंग को पाई अनन्य पदक्षेप और योजना अपनेछंति लोकंक सरकार चासिंग समृद्धि पाई समृद्ध कृषक योजना सीएम किसान कृषि उद्योग और कामधेनु योजना देछि नूतन शक्ति और नूतन सुजोग
1: समृद्ध कृषक योजना रे चासी भाई भौनी मानंको वर्धित हार रे एमएसपी सीएम किसान योजना रे आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे आकर्षणीय सब्सिडी मुख्य

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ ମିଡିୟମ୍ ୱେବ୍ 317.5 meter 945 kHz ଆର୍ ଏଫ୍ଏମ୍ 101 MHz ଥି ଇହାଦେ ଶୁଣୁନ୍ ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁଁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର ନୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर

0: ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। तजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्वभर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मॉनसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर श्रोता बंधु सुनुले हिंदी संवाद रिले करे सुनालु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र न इहादे समय संबलपुरी गीतर कार्यक्रम तो आसुन मूलकर्मा संबलपुरी गीतर कार्यक्रम संगीतर लहर श्रोता बंधु कार्यक्रम पहला गीत के सुनुन कंठशिल्पी नारायण डनसेना आर लेखिछन धरणीधर पटेल।

श्रोता बंधु इहादे सुनने गीतटा विशाल मिश्र रूप कुमार राठोडकर कंठ थी लेखिछन जावेद अख्तर संगीत थी सजेछन अनु मलिक आर मिथुन सिनेमा बॉर्डर 2।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ସର ଫିରୋଜି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी संबलपुर श्रोताबंधु शुणुले हिंदी रे संवाद रिले कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र एथर आरंभ करुछु संबलपुरी गीतर कार्यक्रम कार्यक्रम आरंभ रे शुणंतु दयानिधि बेहरा कंठरे गीतटी गीतिकार विनोद कुमार पसायत।

0: Nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. Seven people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप वैश्विक निवेशक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे
2: कार्यक्रम में नवाचार उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा लुचनिका एंसेंबल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है।

0: उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरिसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनी परिबे टिकिए परे।
4: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
5: गारु सहर जाय सबु स्थान रे
4: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
5: जुआंग और सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
4: केवल आकाशवाणी।

माक्का पुप्पु छक्का छक्का, उपस्थापना ओ प्रयोजना सन्तोष पिङ, आकाशवाणी सम्बलपुर। एथर आरम्भ करुछु हिन्दी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम। कार्यक्रम आरम्भरे शुणन्तु कलाकार कथाचित्ररु ए गीतटी। कण्ठशिल्पी किशोर कुमार, गीत रचना इन्दिवर, संगीत निर्देशना बप्पी लहरी।

आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम आज्ञा आपन को बहुत बहुत स्वागत अमर कार्यक्रम के केंता अछन आज्ञा केंता अछन आओ काण करथिले यादे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାଣା କହୁନ୍ ଆଜି କେନ୍ ଗୀତ ଶୁଣିବାକେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍।

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुआसा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम को। बहुत दूर से आप हमको फोन की है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद, फोन लगा आपसे बातचीत हो रहा है, खुशी बढ़ रहा है मैडम। और स्मृति मनन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सर, SIR सर
0: जी,
1: और गीत की बोल है सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सनी।
0: बहुत सुंदर गीत।
1: सबसे पहले गीत आप निर्देशक साहब को, भारत रत्न श्रोताओं को, आकाशवाणी संबलपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को, आकाशवाणी संबलपुर में जुड़े सभी कृषक भाई बहनों को और स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्सा रेडियो श्रोताओं को, पूरे भारत रत्न श्रोता को जुड़े करो मैडम। इस गीत को पूरा सुनाइएगा
0: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन लीजिए आपका पसंद का गाना
1: जी मैडम।
0: जी धन्यवाद।

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: आज्ञा नमस्कार
0: नमस्कार आज्ञा के कहुचन केनु कहुचन
1: मु सुरेन कुमार साहू आज्ञा गांधी टिकरा पोस्ट ऑफिस कोलता टुकरा डिस्ट्रिक्ट बरगड़ टू कहू जे
0: आपन को बहुत बहुत स्वागत आज्ञा आ कहुन आज्ञा आपन केनता अछन
1: मु तो बढ़िया अछे आज्ञा आपन केनता अछन कहुन तो
0: आमे माने भी बहुत भल अछु आज्ञा
1: आ आपन का परिचय के दो
0: मोर ना होचे स्वीटी पाढ़ी उपस्थापिका स्वीटी पाढ़ी है मुई आज्ञा आओ आज्ञा आज्ञा आम आगुरु भी कथा है चा आज्ञा आ कौन आज्ञा आप कौन करसन
1: मु आज्ञा हमर कसा पितळ काम करूतली
0: आज्ञा आज्ञा
1: वर्तमान हमर रोजगार नै चलबा भले वयस भी हे गला ने
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
1: तो हमर कोडिको वृत्ति भी लोप पाई जाउ छी
0: हेटा तो आए आज्ञा किंतु केही बुझवान नै जे इटा हमर परंपरा लागि बहुत जरूरी है ना काना कहुचन कंसा बासन साइंटिफिकली भी व्यवहार करबाटा बहुत भल आज्ञा आज्ञा तो कहू
1: ना ये लोक त चाहिदा आस्ते आस्ते कमी होचे ना डिमांड ले लोक काम करबार लागि माने कोळिक वृत्तिटा लोप पाइ जाउचे हमर
0: आज्ञा हेटा परे ठीक अछे आज्ञा कहुन आपण आज किन गीत सुनबा के चाहुचन
1: आज देबे आज्ञा मोर नसीब अपना अपना रो
0: आज्ञा
1: भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है
0: बहुत सुंदर गीत बाजले आ गया अब वो सुंदर करी गाउ छन भी ना कण आ गया कहा के डेडिकेट करमा के
1: डेडिकेट तो करमा आ आपन को आगो करमा
0: बहुत बहुत धन्यवाद आ गया
1: तापर आज्ञा हमर आपन को अनुष्ठान रे जतके अछन कर्मकर्ता समस्त को डेडिकेट हेबे
0: आज्ञा
1: आ हम तेजस्वी मिश्र आ अछन आपन को अनुष्ठान रे हमर पुरना हमर माने
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा अच्छा
1: आ तापर हमर घरे अछन आज्ञा दुई छ सपना सोनाले
0: आज्ञा
1: ना छे नात्या आ हमर मैडम अछन कोंतोरेन मैडम
0: आज्ञा तांको स्पेशल डेडिकेट काई गीतटा
1: आज्ञा
0: आपणकर मिसेस को एटा स्पेशल डेडिकेट के
1: गीत रे नाय कोले आज्ञा केनते हवा आगो मिसेस के ना
0: आज्ञा आज्ञा
1: आरे तांगो नाय कोले आज्ञा मते राज हबे ना घरे
0: आज्ञा आज्ञा ठीक कहो जान
1: तापरे आज्ञा मोर अछन समरपुर नानी अछे सरोज कुमारी चाहो
0: आज्ञा
1: न हमर पढान पढान अछे भाई अछे हमर एनवालेंट सुशांत कुमार साहू भाई बहु अछन दीप्ति साहू
0: आज्ञा
1: आओ अछन अमर डेंशन दादा अछन भी अमर ननुपाली न
0: आज्ञा आज्ञा सब परिवार
1: बना या पांच गोचा न अमर गार राजकृष्ण मारणा अमर ते नाने अगर रत्न नाने सता अछे जियो इकी अछे अमर
0: दिल्ली न
1: से बाबूडा तापर अछन आया अमर वर्णप्रभा भवनी अमर इंटरनेशनल श्रोता आया से समस्त और डेडिकेटेड अमर
0: आज्ञा आज्ञा
1: कॉलेज जतके श्रोता छन समस्त तांगर माने डेडिकेटेड है तांगर फोन नहीं लगबा ते बहुत माने कॉन्फ्रेंस कॉल ले काली करथले आ आगर भी करथले भी
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
1: बहुत दुखे जाया स्वर्ण प्रभा बोली मोर ससुर घर कोटा पाली नो
0: आज्ञा ओहो हेति लगे आउ
1: हां भले मते फोन करसन किंतु नहीं लगबा बोली के बिछय जाउ छन बुझले कि नहीं
0: चेष्टा करू तो ना ज्ञान लगबा निश्चय हेटा तो आशा ही करि पारमु आमे
1: के तो आज्ञा पुरुणा श्रोता है
0: आज्ञा आज्ञा
1: आओ तापरे हमर अछन आज्ञा डालबे न चित्तरंजन पुरोहित हमर अति क्लासमेट पुरुणा क्लासमेट है
0: आज्ञा आज्ञा ठीक ठीक अछे सिने आज्ञा अपन जा जांकर
1: हमर आकाश बाड़ी रो जतके अछन हाते हमर श्रोता माने बड़ी होले न
0: आज्ञा आज्ञा
1: हमर बहुत श्रोता जतके पुरुणा नुआ जतके श्रोता रो समतो डेडिकेट कर देबे
0: आज्ञा आज्ञा ई कार्यक्रम माध्यम ती आपन जाजांक ना धल्ले जाजांक ना नाइ भी धल्ले आउ सह परिवार समस्त मिसिकेरी आसुन सुन में आपन कर पसंद र गीत के
1: नमस्कार आज्ञा
0: नमस्कार आज्ञा भल

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲୋ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ
1: ହ୍ୟାଲୋ
0: ହେଲୋ
1: ଦିଦି
0: ହଁ ଜି ନମସ୍ତେ କହାଁ ସେ ବାତ କର ରହେ ଔର କୌନ ବାତ କର ରହେ ଜି ଜି ଫିର ସେ ବୋଲିଏ ଫିର ସେ ବୋଲିଏ ଆପଣା ପରିଚୟ ଫିର ସେ ଦିଜିଏ ବହୁତ ଦୂର ସେ ଆପ ହମସେ ବାତ କର ରହେ ହେଁ ତୋ ବୋଲିଏ ଆପ କେସେ ହେଁ
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे दीदी?
0: बहुत बहुत अच्छा। आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन, तो सुबह भी बारिश हुआ था, अभी अभी बारिश होने का मतलब ये है,
0: अच्छा अच्छा
1: उम्मीद है।
0: अच्छा अच्छा तो ठीक है, बोलिए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: ये है जलवा फिल्म का आंखें प्यारी है, ये गाना सुना दीजिए।
0: ठीक है, बहुत सुंदर गीत आप चूज किए हैं। तो बोलिए किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे क्या?
1: दोस्तों के नाम डेडिकेट करना है, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, जोगेंद्र रंगपी, रमेश पात्र, रोनू पात्र, अंजलि बसुमतारी
0: जी जी
1: और चंद्रकांत दत्ता, सुनाराम बालूंग, विनोद गोगोई और बहुत सारे जो अभी सुन रहे हैं, सभी के लिए डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी ठीक है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका पसंदीदा गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं सबको, और सुन लीजिए आपका पसंद का ये गाना।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार आज्ञा के कहुचन केनु कहुचन
1: मैं डोमाल उदयनारपुर कलाहांडी रो मनोज कुमार पटेल कहुचन।
0: आज्ञा आपन को बहुत बहुत स्वागत आज्ञा।
1: आज्ञा धन्यवाद आज्ञा। आ केनता आछन आज्ञा?
0: बहुत बढ़िया आपन को संगे कथा हेले तो आहुरी भले जाइसु।
1: आज्ञा आज्ञा।
0: आमे माने अमर श्रोता माने होचन आमे गुटी परिवार आउ परिवार मन को से कथा लागले केबे खराब लागला न आज्ञा।
1: आज्ञा
0: आज्ञा। आ कहू ना कि आपन काण करसन?
1: आज्ञा हमर चास बास चली छे आज्ञा माने पनी परिवार चास चली छे हद धान आरंभ हो जाय आज्ञा आ किसी दिन गले।
0: आज्ञा आज्ञा इटा तो वर्षा आरंभ हो जाय बले फिर धान काम आरंभ हो जिबा तो बाकी इटा तो रज आज तो पहली रज यहाँ तो टिके रेस्ट दीथिबे 3 दिन।
1: आमा साइड नहीं मानन आज्ञा रज संक्रांति नहीं मानन।
0: अच्छा अच्छा आज्ञा आज्ञा ठीक हो ठीक अच्छे कहन आज्ञा आपन आज केन गीत सुनबा के चाहो छ?
1: आज महाभारत फिल्म रो 13 में बंधन है से गीत सुनि देबे आज्ञा।
0: बहुत सुंदर गीत के बाचले
1: डेडिकेट करबार छ आज्ञा।
0: आज्ञा कहन कहन
1: चित्र सेन सबर सेवांचल सबर क्षमा सबर साहू नागो पात्र हाउ करम सैनिक साहू सुवर कुमार साहू चैतन्य पटेल हाउ जसवंत पायक मुरली मेहर हाउ अच्छा आज्ञा उपेन्द्र सेना कोटापाली प्रभा कर आउ लोकनाथ लोकनाथ साहू आउ लोकनाथ प्रधान आउ जते छोड़ के समस्त श्रोता के आज्ञा सबके तो मन में रखिए आउ आपन के।
0: आज्ञा आज्ञा आपन जाजांक ना धरले से माने होचन अमर नियमित श्रोता आशा करू छे जे यहा दे समस्त अमर कार्यक्रम सुनुतिबे आउ अमर कार्यक्रम माध्यम ती डेडिकेट कर दोचो ई सुंदर गीत के आ सुनमा आपन कर पसंद रो गीत के। आज्ञा
1: आज्ञा गुटे कथा कहिबे आज्ञा।
0: आज्ञा कहुन कहुन
1: माने आपन कर फोन कॉल टिके कारा होय छे जे आज्ञा हमर साइड रे सुगा लाग जिबा छे कटी कटी करि आछ छे
0: आपन
1: सदा के टिके ठीक करबे आज्ञा बोले श्रोता के टिके सुनई नै हेले आज्ञा केनता कर प्रश्न रो उत्तर देबे आज्ञा।
0: आज्ञा आपन एप रे सुनसन कि रेडियो रे?
1: नै नै फोन कॉल रे सुगा लाग जिबा रे रेडियो रे क्लियर आछ छे आज्ञा।
0: आज्ञा आज्ञा ठीक अच्छे आज्ञा अमर वैषयिक सहायता जे करजन तांकर संगे हमें ई बाबदे कथा हेमो यादे सुनी पकोन आपनकर पसंद रो गीत के।
1: धन्यवाद आज्ञा नमस्कार।
0: नमस्कार आज्ञा।

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: हेलो नमस्ते दीदी प्रणाम।
0: नमस्ते जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं कोडवा साजा छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम को।
1: जी दीदी
0: और बोलिए आप कैसे हैं?
1: सब बढ़िया दीदी, आप लोग?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप क्या करते हैं?
1: यात्रा काम करता हूँ दीदी, सवारी का चक्कर की तीर्थयात्रा घुमाने के लिए जाता हूँ।
0: अरे आप तो बहुत पुण्य काम कर रहे हैं।
1: जब आप ही लोग आशीर्वाद दीदी।
0: जी जी जी ठीक है, फिर बोलिए आप कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
1: यात्रा सावन का है, मेघारे मेघारे सुरेश वाड़ेकर जी की आवाज है और इसमें जितेंद्र और मौसमी चटर्जी जी की फिल्म है।
0: जी जी जी बहुत अच्छा गीत आप चूज किए हैं। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे क्या?
1: हाँ दीदी, पहले तो संबलपुर रेडियो जो आकाशवाणी के आरजे बहन लोग, आप लोग आरजे भैया लोग हैं, उसके बाद मेरा परिवार बड़ल का पीएस गुप्ता, उसके दो लड़के श्रेयांश गुप्ता शशांक गुप्ता, लड़की सेकंड नंबर प्रीति जैन, उसके दो लड़के अनंत जैन हर्षित जैन, छोटा लड़का विवेक गुप्ता, पत्नी के नाम हीरा देवी। तो उसके बाद रेडियो संबलपुर जितने भी श्रोता भाई बंधु उसके साथ इस गीत को सुनेंगे के लिए।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके साथ मिलकर आइए सुनते हैं आपका ये पसंदीदा गाना।
1: जी जी धन्यवाद,
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे देओक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी संबलपुर शुणुले हिंदी रे संवाद आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र वर्तमान शुणु संबलपुर मुख्य संवाद
3: आकाशवाणी संबलपुर मुखिया खबर पढ़ुछन तापस रंजन साहू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस आउ स्लोभाकिया द्विराष्ट्र यूरोप गस्तर पहला दिन एज निस पालाइस डेस एक्सपोजिशन रे भारत इनोभेट्स कार्यक्रम के प्रधानमंत्री मिलित भावे फ्रांस राष्ट्रपति संगे कले उद्घाटन। प्रधानमंत्री सांगे कार्यक्रम थी जोग देले वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल, प्रमुख वैज्ञानिक परामर्शदाता अजय कुमार सुद, इन्फोसिस प्रतिष्ठाता नारायण मूर्ति आउ बहुत भारत व्यवसाय जगतर नाकरा व्यक्ति। आवा 16 तारीख 52वां G7 सम्मेलन

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्कीगळु। क्या है?
1: कडल हक्कीगळु।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।

0: कर्नाटक संगीत में ये चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता ताकी ता ताकी।

हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना। तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

0: I think Saurabh Das, Junior Athletic Champion 2023. Anything wrong with you? Don't worry. Try for the next time.
1: Tension nahi na. Maybe kichi better option thi to pai. Chhade obhyas. Hale better option kono? Aau kichi option rahi ban to pakhare.
2: शक्ति बाजार रे एसएचजी मां मानंको हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलेट्रो प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्रीर संभार हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री बेस आकर्षणीय एवं प्रतिटि मिलेट सामग्री शुद्ध ओ स्वास्थ्यप्रद जून 12 रु 16 तारीख पर्यंत ए थरर रज मौजकु आहुरी उल्लास रे भरिबाकु जाउछि सुभद्रा शक्ति बाजारर स्वतंत्र रिहाति ए थर रज रे स्वतंत्र मजा सुभद्रा शक्ति बाजार स्टार स्कूल पाखो यूनिट 8 एसआईआरडी परिसर भुवनेश्वर

0: प्रशासनिक व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था भक्त श्रृंखलित दर्शन उपरे गुरुत्वारोप जनापड़ी ए संपर्क में श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉ अरविंद पाढ़ी
1: विशेषकर श्रीमंदिर रत्नभंडार गच्छित अलंकार आदि गणति जहां भी मार्गदर्शिका राज्य सरकार से हिसाब से जहां भी गणति मणति एवं परवर्त पर्यायर भितर भंडार जो गणति प्रक्रिया आम परिचालना कमिटी को अवगत कलु जेहेतु आगामी दिन में महाप्रभु स्नान पूर्णिमा अच्छी रथजात्रा घोषजात्रा अच्छी बाहुड़ा जात्रा अच्छी नीलाद्री विजय पर्यंत अनेक नीतिकांति रही महाप्रभु श्रीअंग भी किसी अलंकार अच्छी जहां भी आमको गणति प्रक्रिय सामिल होगा पड़ तेणु परिचालना कमिटी परामर्श दे वर्तमान गणति प्रक्रिया स्थगित नीलाद्री विजय पर कौ तिथि ताकू मुख्य प्रशासक सरकार को सूचना दे ताकू करिवे एवं ता सहित जो एसओपी अच्छी बा व्यवस्थावली अच्छी सेथिरे किछिटा हुआ व्यवस्थावली दरकार
0: एबे किछि संवाद संक्षेप रे आमो संवाददाता थारु
2: पुरेथिबा तालावणिया थानार नूतन गृह को मुख्यमंत्री मोहन चरणमा जी उद्घाटन करिवा सेटा अनुसूचित एक सभा रे मुख्य अतिथि भाव योगदान करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे अन्यान्य विभिन्न स्थान मानकर होइतिबा पुलिस बासगृह निर्माण को मध्ये उद्घाटन करथिले निमापड़ा सफलतार आयोजित हो उत्कर्ष निमापड़ा सम्मेलनी एक कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रभाती पीड़ा तथा क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज योगदान कर निमापड़ा एपरी कार्यक्रम को प्रशंसा करने माराथन गणदौड़ पंचायत स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता सेवा दिवस सहित पारंपरिक ओडिया खाद्य प्रतियोगिता भाग नहीं कृतित्व अर्जन कर प्राय 150 ऊर्ध छात्र छात्री युवक और महिला पुरस्कृत करते पुरी श्रीमंदिर संपर्कित दुई गोटी शब्द आनंद बजार और पतित बावन सह श्री जगन्नाथ टेम्पल आडमिनिस्ट्रेसन नीलचक्र लोगो को मिली आईपी इंडिया पैटेंट अनुमोदन श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर् 29 गोटी नाम को नहीं ट्रेडमार्क दरखास्त प्रदान प्राथमिक भाव तीन टी ट्रेडमार्क नाम पंजीकरण कर पुरी जिला पिपिली में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा प्राय 80 कोटी टंका खर्च बहु प्रतीक्षित चांदुआ हाव निर्माण नहीं शिलान्यास हो पांचमाला विशिष्ट अत्याधुनिक चांदुआ बजार निर्माण होगा बेले ए 6000 स्थानीय चांदुआ कारीगर उपकृत हेबे एथिसह 50 व्यवसायिक दोकान 6 सरकारी शोरूम लाइट डेमोन्स्ट्रेसन केन्द्र ट्रेनिंग सेन्टर ऑडियो विजुअल गैलेरी मुक्त आकाश रंगमंच ओडिया फूड कोर्ट भली समस्त अत्याधुनिक सुविधा फूड कोर्ट रे मिलियो बोली जाना पड़ी
0: जिला हलचल आज पई एतिकी आसंता काली जिला हलचल रे सुनिबे रायगडा जिला संपर्क रे।
3: कार्यक्रम शुणुले आकाशवाणी कटक केन्द्र आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुचु कृषि संसार कार्यक्रम।

0: सौते तुम्हें तो बुझू छो कि नहीं
1: बुझलू गोमा बुझलू जे ई मैला कचरा पानी के चासे लगाले तुमर कै असुविधा हबा जे हे कथा तो जानी नहीं हला मा
0: इथि मोर दुख बढ़ी जायसी मते बड़ा असुविधा आसी का करी बोले

0: चल रे कलिया
1: बहुत बढ़िया सीखवा ले मिला भाई
2: आज भागिर दिन ठीक लाला कि आपको ना
1: मा मैट मार मनर कथा जेंटा कवि तबने मार कथा
2: लेखक बोल
1: लेखक तबने मा माटीर कथा कलाकार टुणे जे हिसाब रे कहि देछन
2: ताकर दुखर कथा पर
1: उतरे इंजन एते सुंदर लागला पूरा मन के भेदी गला अरे देखो तो आमे जते बेले खुश थिसु हते बेले जे भल काम करि पारछु आमे मा मार के जदी सुस्थ रखमा बोले जाइ करी आमे फल उत्पादन पैमा आउ आमे जदी फल उत्पादन पैमा बोले आमर परिवार जाइ करी सुस्थ रहबा सुखी रहबा आउ संपन्न रहबा नै के
2: देखो दा मा मैट करी आमे जतन नै कोला माटी सब पैमा कि ना हम खाद्य पैमा वस्त्र बसगर सब किछ मिलु जे
1: हां परे
2: बोले से जिनिस के आमे वन करी ताकर जे जतन पादन करी नै रखला आमे त मुन गोल बेकार हि माने
1: आ देखो तो मा मैट सब जकर सब छै तो सबु जाकर जेतु सोहुचे आमे तार भी जतन रखवार आमर भी कर्तव्य है दायित्व है आउ सेटा जदि आमे नै कोइ पारुछु बले आमे खराब पु बोली थोरा जी माने शास्त्र रे गुडे कथा अछे भाई खराब पु हेई परबा किनु मां केबे खराब नै पारे तो मां तो खराब नै हे किनु आमे भल पु हेवार कथा खराब पु नै हेवार कथा जी सुनो तो एते सुंदर जन सबु अभिनय करथिले के सबु आना के सबु भाग नैथिले टिके जल्दी
2: कोई नुल तो जेन मैंने नाटक से कृष्णचंद्र आचार्य गणेशराम सेठ कमला साहू मानसी नंद आ गीत जेन गाई रीना दास गगन चंद्र बाग धनेश्वर दास बजे थे जेन मैंने देवाशीष पाढ़ी रंजन साहू प्रदीप्त शेखर महापात्र सोमनाथ जाल शंकर प्रसाद प्रधान
1: अच्छा समय तो हे गले न अभी कथा लाई थी त
2: कोई खुजुर मुजुर हेलो की जानली
1: बेले
2: पलामा भाई जाओ जाओ जा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरेलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आवश्यकता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय

0: tall, short, Hindu, Muslim, Christian, no, it doesn't really matter at all. Just give yourself. The bond becomes stronger. And I wanted to reach out to these people, not with my hands, but with my heart. That's all.
1: Somewhere in your city right now, there is a person who needs blood. You do not know their name. They do not know yours. They may never know you exist, but you could be the reason they see tomorrow. You could be someone's river. One donation can help up to 3 patients. The thread is there. You can be part of it. Happy World Blood Donor Day. Give blood, save lives.
2: The Thread Between Us. That was a feature on World Blood Donor Day. Written by Pranav Saxena. Narration was by Lucy Chattopadhyay. Other voices included Manoj Mayankar, Sudhir Rajoria, Nisha Bhardwaj, Hongla Form, and Dilip Jha. Produced by Nitish Arora, this was a presentation of Central English Features Unit and came to you from the Delhi station of Akashwani.
3: ये आकाशवाणी है रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वी एस पी गायत्री सिवानी मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत
4: दिस इज आकाशवाणी In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeeta Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on Mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on Ghatam by Sri M. Chandrakant.
3: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आखेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वहीं संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
4: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विथ ऑल इंडिया रेडियो ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड डायनामिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग ही हेल्स फ्रॉम ए डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली श्रीराम वॉज इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक बाई हिज मदर श्रीमती जे चिद्रूप लक्ष्मी Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
3: Shri J. Shri Ram apne gayan ka aarambh Valaji Peta Venkata Ramana Bhagwatar ki ek kriti se kar rahe hain, jo raag lalita tatha adi taal mein nibadh hai.
4: Shri J. Shri Ram begins his vocal recital with a composition of Valaji Peta Venkata Ramana Bhagavatar in the rag Lalita set to Aditala.

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है.
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: लीजिए, श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पीरवली जयभास्कर and on घटम by श्री एम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएससी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे श्रीराम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट was recorded at the studios of Akashvani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ଏତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ
3: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଏହା ଛିଣ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତର୍ପଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ନେଇକରି ହେଲା ପ୍ରତିନିଧିସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ ଥି ଠାନ୍ ପାଇଲା ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓମାନ ଉପକୂଳରୁ ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜ ବିରାଟ ଏକର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ସବୁ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଭାରତର ମହାକାଶ ଅର୍ଥନୀତି ଆଇବା ଦଶନ୍ଧି ପାଖାପାଖି 40-45 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍ ପହଞ୍ଚବା ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକେ ଗଲା 12 ବର୍ଷରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକେ ସହଜ ଆଉ ସୁଲଭ ଦର୍ଥି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଯାଇପାରିଛେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଷ୍ଠାନୁମୂଲ ହେଉଛି ତିନିଦିନିଆ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ରଜ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରକ୍ତଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ରକ୍ତଦାନକେ ତହକାବାର ଲାଗି ଆଜି ପାଳନ କରାଗଲା ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ନନ୍ପଡ଼ାର ପତରପେଣି ସହିତ ଆଜି ମୂଲ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆଇବାକାଲ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ବିହାତି ଯୋଗ ଦେବାର ଲାଗି ନରସିଂହ ମହାପୁରୁ ସହରର ଦେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବେ ନ୍ୟୁତା ଆଇବା 16 ତାରିଖ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ବାବା ଆଉ ମୁଦିପଡ଼ାର ଶ୍ରୀ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା ଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫ ହେବା ପତରପେଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗତି ହୋଇଥିବାର ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 68 ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆଜି ମୂଲ କରିଛନ୍ ଯାତ୍ରା ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର 10 ନମ୍ବର ସଂସ୍କରଣ ଥି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପହିଲା ଇନିଂସ୍ ଥି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭର୍ତ୍ତୀ 6ଟା ୱିକେଟ୍ ହରେକରି କରିଥିଲା 170 ରନ୍ ଜବାବ ଥି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ 17 ଓଭର୍ତ୍ତୀ 106 ରନ୍ କରିକରି ହେଇଯାଇଛି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ 64 ରନ୍ ଥି ଜିତିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆଇବା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାଲବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଥି ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଇଲାକାନୁ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଏନୁ ଶେଷ ହେଲା ଜୁହାର
2: ଶୁଣିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ